मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, DTH, वेव्स OTT और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जो रिले होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसे सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमनों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा

0: और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है धान की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंध। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: भाइयों, आज हम धान की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंध के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे कैसे और कब इसमें सिंचाई की जाए एवं कब उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। पहले सिंचाई के बारे में चर्चा करते हैं। धान की खेती में उचित जल प्रबंध के लिए 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला यह कि वर्षा के पानी का भरपूर उपयोग किया जाए। इसके लिए खेत को समतल बनाना तथा उसकी मेड़बंदी करना आवश्यक होता है। यह कार्य पहले ही किया जाता है। दूसरी बात यह कि बहुत अधिक पानी यदि खेत में लगातार लगा रहे तो उसकी निकासी की व्यवस्था हो। और तीसरी बात ध्यान में यह रखना है कि जब बारिश ना हो तो धान में सिंचाई की निजी व्यवस्था की जाए। यह कहावत कि धान पान और केला तीनों पानी के हैं चेला, 16वां सही है। वास्तव में धान की फसल में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे जब धान की रोपाई की जाती है तो रोपाई के 1 सप्ताह तक खेत में पानी लगा रहना चाहिए। यहीं पर यह भी बात आती है कि फसल में कितना पानी दिया जाए। इसके लिए किसान भाई यह जान लें कि खेत में 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक ही पानी होना चाहिए। इसके अलावा कल्ले फूटने की अवस्था, बाली निकलने तथा दाना भरने की अवस्था में भी खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इन अवस्थाओं में यदि समय से बारिश हो जाती है तब तो समझो ठीक है, और यदि बारिश न हो तो सिंचाई अवश्य करना चाहिए। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त अन्य समय में तो सिंचाई करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन खेत की मिट्टी तर ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, रोपाई के 40 से 50 दिन के बीच खेत से पानी एक बार ज़रूर निकाल देना चाहिए। धान की फसल से बहुत से किसान भाई पानी नहीं निकालना चाहते हैं, लेकिन यह उचित नहीं। समय समय पर जल निकासी से जड़ों की बढ़वार सुचारू रूप से होती है, साथ ही हानिकर फफूंदी तथा कीड़े मकोड़ों का प्रभाव भी कम होता है। हमारे देश में धान की उपज कम होने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण खरपतवारों से होने वाली हानि है। कभी कभी तो खरपतवारों की वजह से नाम मात्र की ही उपज प्राप्त होती है। ये खरपतवार फसल रोपने या बोने के साथ ही निकलते हैं तथा धान के खेत से पोषक तत्वों एवं जल का उपयोग करते हैं। यहीं पर हमें एक और खास बात भी जान लेनी चाहिए, वह यह कि इन खरपतवारों का नियंत्रण फसल रोपने के 20 से 40 दिन के अंदर ही कर लिया जाए, क्योंकि इसी अवधि में खरपतवारों से फसल को ज़्यादा नुकसान होता है। खरपतवार नियंत्रण के बाद नतजनी उर्वरकों का बुरकाव करते हैं। यदि बोया गया धान है तो प्रति एकड़ की दर से 40 किलोग्राम यूरिया कल्ले फूटते समय और 10 किलोग्राम यूरिया बाली बनते समय खेत में बुरक देना चाहिए। अगर देसी प्रजातियों की बुआई किए हैं तो उसमें उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने धान की रोपाई की है तो शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे साके 4, मनहर आदि के लिए 20 किलोग्राम यूरिया कल्ले बनते समय तथा शेष 20 किलोग्राम यूरिया को बाली बनने की प्रारंभिक अवस्था में प्रति एकड़ की दर से खेत में भुरक देना चाहिए। यदि IR8, जया, सरयू 52, पंतधान 4, सीता जैसी मध्यम देर से पकने वाली किस्में हैं तो 25 किलोग्राम यूरिया कल्ले बनते समय एवं 25 किलोग्राम यूरिया बाली बनने की शुरुआत की अवस्था में खेत में बुरकाव कर देते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर धान की फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रयोग करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था धान की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंध। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं।

भगवान शिव हैं योगी, वे रहते हैं हिमालय पर और श्रावण मास में शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। आइए करें भगवान शिव को प्रणाम।

भगवान हरि के हाथों में सुदर्शन चक्र, गदा, कमल और शंख हैं। वे हैं पूरे विश्व के पालनहार। आइए करें उन्हें प्रणाम।

प्रभु ही राम और कृष्ण के रूपों में हमारे बीच लीला करने आते हैं और करते हैं अपने भक्तों को तृप्त।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज के गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, रूप कुमार राठौर, सुमन कल्याणपुर, ओम प्रकाश और हरीश भारद्वाज। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:30 हो रहे हैं। आइए सुने विचार बिंदु। आज का विषय केंद्रित है महादेवी वर्मा पर।
1: नहरी किरणें आई नभ में फैली लालिमा, जाग उठे सपने मेरे, हो गई नई सृष्टि की रचना। इन सारगर्भित पंक्तियों की रचनाकार छायावाद की प्रमुख स्तंभ कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके सृजन की विधा मुख्य रूप से कविताएं हैं। उनके 8 प्रमुख कविता संग्रह हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा का उदय एक सशक्त क्रांति के समान था। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रमुख रचनाओं में हृदय के भाव की कोमलता को प्रस्तुत किया, जो उस समय एक महत्वपूर्ण पहल थी। महादेवी वर्मा ने भारतीय दर्शन को आत्मसात करने वाले गीतों का समृद्ध भंडार हमें सौंपा। महादेवी वर्मा का कार्यक्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन तक विस्तृत था। उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। महादेवी वर्मा की भाषा शैली उनकी भावनाओं का दर्पण है। उनके शब्द पाठकों के हृदय को छू लेते हैं, चाहे वो गहरी वेदना हो या प्रेम की कोमलता। प्रकृति, प्रेम और जीवन की सुंदरता को चित्रित करने में उनकी भाषा जादुई लगती है। गहन विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए वो प्रतीकों का कुशलतापूर्वक उपयोग करती हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो कोई मधुर संगीत बज रहा हो। शब्दों का चयन इतनी सावधानी से किया गया है कि उनमें से प्रत्येक शब्द रचना की भावना को और गहराई प्रदान करता है। महादेवी वर्मा की कविता का सार उनकी भाषा शैली में ही निहित है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था, पर उनकी कविताओं में बड़े अनुभवी कवियों के लेखन की तरह गहन संवेदनशीलता और भावनात्मकता थी। इनकी लेखन शैली सरल और सजीव थी, साथ ही कविताओं में प्रेम, वेदना और आत्मसंघर्ष शामिल था। महादेवी वर्मा ने महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध किया और समाज सुधार के लिए अपने लेखन का उपयोग किया। उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण शामिल हैं। महादेवी वर्मा न केवल कवयित्री थीं, बल्कि संगीत और चित्रकला में भी निपुण थीं। उनके गीतों में संगीत का नाद सौंदर्य स्पष्ट झलकता है। मानवता के विकास में साहित्य, शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी के महत्व को महादेवी ने बखूबी पहचाना। वे मुखरता से कहती थीं,
2: एक युग ऐसा था जब मैत्री दद्दा का चालके प्रकाशित हुआ तो स्वयं गांधी जी ने 3 दिन में उसको समाप्त किया था। और महादेव भाई से कहा, तुम पढ़ो, अपनी अस्मिता जाने, अपनी सरस्वती को जाने, मस्तक आपका केवल हमें झुके और कहीं न झुके। देखिए, हम बदल लेंगे जीवन की ऋतु को, आप बदल देंगे, नया संकल्प लेंगे और विद्यार्थी के आदर के योग हो जाएंगे। केवल जन्म से आदमी नहीं हो जाता, अपने दीपक आप बनो। और कोई नहीं होता, जब अंधेरा होता है ना तो सूर्य

0: इतना उत्तराधिकार हिमालय को नहीं देता, समुद्र इतना गहरा है उसको भी नहीं देता, लेकिन ये को देता है। तो एक गीत मैंने लिखा था, रात के इस सघन अंधेरे से जूता सूर्य नहीं जूता रात जूते, कौन सी रश्मि कब हुई कंपित, कौन आंधी वहां पहुंच पाई और कौन सी फूक कब बुझा पाई, जूती रंग सूर्य है गगन ही का पर तुम्हारा सृजन यही दीपक, रात में सूर्य से बड़ा दीपक। तो वास्तव में आज आपको शाम अलौकिक होना है।
1: अपनी एक कविता में महादेवी वर्मा प्रेम को अलौकिक और अनंत विस्तार देती हैं। तुम्हारी आंखों में मैंने अनंत प्रेम का सागर देखा, उस सागर की गहराई में मैंने अपना अस्तित्व खो दिया।
2: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु, जो कि केंद्रित था महादेवी वर्मा पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:35 हो रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है बरसात के मौसम में होने वाली समसामयिक बीमारियां और होम्योपैथिक उपचार। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय। श्रोताओं, हम लोग अभी बात कर रहे थे बरसात में होने वाली बीमारियां, हमने उससे होने वाली बीमारियों पर बातचीत कर चुके हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं हम उस पर बातचीत कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम अब अगले स्टेप पे चलते हैं बचाव के। अब इसमें बचाव क्या क्या किया जाए, जिससे हम सावधानियां क्या क्या बरती जाए, जिससे हम बरसात में होने वाली बीमारियों से बचे रहें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। पहला तो हाइड्रेटेड रहें, दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर मिनिमम पानी जरूर पिएं, और पानी की एक इस समय विशेषकर बरसात में ध्यान रखें वो स्वच्छ हो। स्वच्छ होना देखने से नहीं स्वच्छ होना हो चाहिए, उसमें बैक्टीरिया और विषाणु इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। या तो आरओ का पानी पिए। खाना इस समय जो होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसकी जो डाइजेशन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए कोशिश करें खाना जो है हल्का सुपाच्य लें। अपने भूख से जो भूख आपकी है 80% उससे कम ही खाना खाएं, और उस खाने में जो है कोशिश करें कि अपने साथ साथ उसमें सलाद और प्रोबायोटिक जैसे दही और इस तरीके की चीज़ें जो फर्मेंटेड कुछ आती हैं उनको जरूर शामिल करें। खाने में अपने फाइबर का सेवन, फल और सलाद अवश्य शामिल करें, और अपनी इम्यूनिटी को इस समय स्ट्रांग रखें। इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए आप संतुलित भोजन तो ले ही लें, साथ में अदरक, हल्दी, तुलसी, अजवाइन इस तरीके का अभी चीज़ों का काढ़े के रूप में, चाय के रूप में सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इससे आपकी स्ट्रांग रहती है। मच्छरों से बचाव होना जरूरी है, क्योंकि मच्छरों से भी कई बीमारियां इस बरसात में होती हैं। तो मच्छरों से बचाव के लिए कुछ कॉमन से प्रोटोकॉल होते हैं, अगल बगल जो है आप साफ सफाई का ध्यान रखें, पानी न लगने दें कूलर वगैरह के या टायर वगैरह छत वत पे पड़े हैं, अगल बगल नाली वाली पानी है तो वहाँ से पानी साफ कर दें, उसमें मच्छर रोधी जो है लार्विसाइडल कुछ दवाइयाँ आती हैं वो डाल दें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये तो जो मैं अब बोलने जा रहा पॉइंट ये हर सीजन के लिए बेस्ट है, लेकिन बरसात में तो और भी बेस्ट हो जाता है क्योंकि आपका इम्यूनिटी और अच्छा करना है। व्यायाम, योग, ध्यान, प्राणायाम, साइकिलिंग, रनिंग, जुम्बा, जिस तरीके से आप समझ सके कम से कम आधे घंटे अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर दें। ये बहुत ही जरूरी है आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और आपको इन बीमारियों से बचने के लिए। उसके साथ साथ तनाव, एक बहुत बड़ा एक डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, एक खुश रहे, मस्त रहे, और जो चीजें आप आपके हाथ में हो उसके अच्छे से करें, और भरपूर नींद लें, 8 घंटे की कम से कम प्रॉपर स्लीप लें वो बहुत जरूरी है, और जहां भी आप सोए हवादार कमरा रहे, और मच्छरों से बिल्कुल बहुत ज़्यादा बचाव का ध्यान रखें। स्वच्छता, बरसात हो और स्वच्छता की बात ना हो यह संभव सी बात है, तो पहले तो आप व्यक्तिगत स्वच्छता की बात ध्यान रखें कि अपने पूरे शरीर को दिन भर में 2 बार नहाएं, और नहाने के बाद जो अपने नाखून वगैरह उनको अच्छे से काट के रखें, कपड़े स्वच्छ पहने और धुले हुए रहें, और पाउडर कम से कम एक डाल के रखें, टेलकम पाउडर, इस समय डस्टिंग पाउडर बहुत ज़रूरी होता है। आसपास अपने घर में झाड़ू वगैरह सही से लगा रहे, कहीं गंदगी न रहे। हो गई हम अपना ध्यान रख लिए, अपने घर का ध्यान रख लिया, मोहल्ले में निकलिए, अगल बगल मोहल्ले में भी जाके देखिए, क्योंकि वो जो वहाँ का मक्खी मच्छर होगा वो भी आप ही घर आके परेशान करेगा, वहाँ का भी विषाणु और कीटाणु जो होगा वो आपको आके परेशान करेगा, ग्रसित करेगा, तो इसलिए वहाँ भी कोशिश करें अगल बगल लोगों से मिलके सामूहिक योगदान करके अगल बगल सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसमें

0: मैं आपको, आपके जो लोग हैं अगल बगल के पड़ोसी, वो तो हेल्प करेंगे ही करेंगे आपके साथ, हमारी सरकार, नगर निगम, इस तरीके के लोग भी लगातार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के स्वच्छता के लिए लगे हुए हैं, तो उनका साथ दें। क्योंकि मैं एक होम्योपैथी चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ, तो मैं होम्योपैथी की बरसात से संबंधित कुछ कॉमन बीमारियों में जो है, जो दवाइयाँ हमारी कॉमन चलती हैं, उन पर बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ इस सीजन में। अब आप सोचिए कि जो हमारे यहाँ इस तरीके की भी लिखी हुई है कि बरसात के सीजन में कोई भी बीमारी हो, अगर वो ह्यूमिडिटी के साथ अगर हो रही है, उसमें सीजन की कुछ कॉमन सी दवाइयाँ हैं। अब आप सोचिए होम्योपैथी चिकित्सा विधा कहाँ तक पहुँची हुई है, जिसमें आरटी, डलका मारा, नेट्रमसल, थूजा, ब्राइनिया, बेलाडोना, इस तरीके की कॉमन दवाइयाँ आ रही हैं, जो इस सीजन में बहुत ही किसी भी तरीके की।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय था बरसात के मौसम में होने वाली समसामयिक बीमारियां और होम्योपैथिक उपचार। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:40 हो रहे हैं। आइए सुने श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

भारद्वाज आश्रम में विश्राम करने के पश्चात श्री राम सीता तथा लक्ष्मण समेत यमुना पार करके गहन वन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर वनों, सरोवर तथा पर्वतों की निराली छटा देखते हुए श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। वन, पर्वत श्रृंखलाओं तथा पवित्र जलाशयों से घिरा ऋषिवर का निवास स्थान अत्यंत रमणीक है। सरोवरों में कमल तथा वन वृक्षों पर पुष्पों की भरमार है। ऋषिवर ने श्रीराम के आगमन का समाचार सुन उनकी अगवानी की। उन्हें दंडवत प्रणाम निवेदित कर श्रीराम आदि ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगंतुकों की छवि देख मुनिवर के नेत्र शीतल हुए। मधुर कंद मूल और फलों का आहार प्रस्तुत करके अतिथियों के विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। श्रीराम ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि से अपने वनवास की कथा सुनाई। बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही तथा धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके चरण स्पर्श करके आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण और रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा। ये दोनों ही कार्यक्रम रिले होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिन में 12:45 पर आप सुनेंगे शहनाई वादन। कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां व साथी। इसी कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे शहनाई वादन। कलाकार होंगे चंद्रकांत प्रसाद। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे भजन। कलाकार होंगे लोकेश शुक्ला। गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर और शाम 7 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी कार्यक्रम। शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आज आप सुनेंगे दूरस्थ शिक्षा एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली। इस विषय पर डॉक्टर श्रवण कुमार पांडेय से रामकृष्ण मिश्र की बातचीत। और खेती में फसल चक्र का महत्व विषय पर चर्चा। साथ ही सुनिए डॉक्टर माधवी सिंह के गाए लोकगीत। इनके गाए लोकगीतों का आनंद आप दिन में 1:45 और सुबह 9:50 पर भी ले सकेंगे। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण होंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आधारित आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। दिन में 2:30 पर सुनिए कुछ बातें कुछ गीत। प्रस्तुति होगी सना सलीम की। और दिन में 1:15 पर शहरी महिलाएं सुनेंगे अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, जिसमें सावन विशेष पर सुनिए हरियाला सावन ढोल बजाता आया कार्यक्रम। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम।

0: भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व राजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखंड गुजरात क्षेत्रेषु अपि अतिवृष्टिः संभाव्यते। आंध्र प्रदेश झारखंड कर्नाटक प्रदेशेषु विद्युतपात झंझावाताभ्यां सह अतिवृष्टि परा संचेतना च प्रसारिता। राष्ट्रीय राजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मंद वृष्टिः संभाव्यते। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: उससे अप्पा
1: आ गई है बनारसी कुड़ी। सो बनारस, लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
3: ओए हो हो, डेथ ही होगी।
4: मैं सेंस में बहुत अच्छा हूं, ये पता चलेगा।
0: हां जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक मस्त और बढ़िया हैं। सब कुछ बढ़िया होना लाजमी भी है क्योंकि ये बनारस है गुरु। यहाँ हर सुबह एक नया शंखनाद है। बाहर बादलों ने डेरा डाला है, हवाओं में हल्की ठंडी फुहार है, तो चाय का कप उठाइए और कान हमारे रेडियो पर लगा लीजिए। गलियों में सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि ये हफ्ता खुशियों का पिटारा लेकर आ रहा है। जी हाँ, इस हफ्ते 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस है और उसी दिन हरियाली तीज का उल्लास भी शुरू हो चुका है। बनारस के बाजारों में तिरंगे झंडों की बहार है और लंका से लेकर चौक तक मिठाइयों की दुकान पर तैयारियां शुरू हो गई है। तो आपकी तैयारी पूरी हुई या नहीं? अच्छा, तैयारियों से देखिए याद आया कि अक्सर ज्यादातर लोग किस्मत के भरोसे जिंदगी जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में सब पहले से ही नियति ने तय कर रखा है, लिहाजा किसी भी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। वहीं कुछ लोगों का नजरिया अलग होता है और वो मानते हैं कि उन्हें नियति ने इस दुनिया को बदलने के लिए भेजा है। ऐसे में उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। ये उन लोगों की फितरत पर निर्भर करता है कि उनके लिए किए गए काम का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। यकीनन हम उन्हीं लोगों की तारीफ करते हैं जिन्होंने दुनिया को बेहतर, महफूज और खुशनुमा जगह बनाने की कोशिश की है। अगर आप भी अपने किसी लक्ष्य को सफल बनाना चाहते हैं तो उसमें पूरी तन्मयता के साथ समर्पित हो जाइए। ये मत सोचिए कि लक्ष्य का परिणाम क्या निकलेगा, बस पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ उसमें सफल होने की कोशिश कीजिए और आपको कामयाबी जो है ना, देखिएगा, जरूर मिलेगी। महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह तपना होगा। और लोग सिर्फ आपकी सफलता देखते हैं, उसके पीछे की रातों की नींद और आंसुओं को नहीं देखते। जो इंसान हार मानकर बैठ जाता है वो खो जाता है और जो गिरकर फिर से उठता है वही इतिहास रचता है। इसलिए अगर आज आपकी लाइफ में अंधेरा है, मुश्किलें हैं, तो डरिए मत। ये इस बात का सबूत है कि आपकी चमक बहुत बड़ी होने वाली है। गुड मॉर्निंग बनारस। ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 12 अगस्त 2026 और दिन है आज बुधवार का। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर में आज खास। आपको बता दें कि VDA केवल नक्शा ऑनलाइन पास अब नहीं करेगा बल्कि कंपाउंडिंग भी करेगा। जी हाँ, VDA ने ऑनलाइन VDA कंपाउंडिंग सिस्टम OVCS शुरू किया है। अब तक मानचित्र स्वीकृति से संबंधित कंपाउंडिंग प्रकरणों की फाइलें ऑफलाइन जमा और संचालित होती थीं। कई बार फाइलों की प्रगति का पता लगाना कठिन हो जाता था, कुछ मामलों में फाइलों का ट्रैक भी खो जाता था। अब कंपाउंडिंग के लिए आवेदन ऑनलाइन हो सकेंगे।

इसके साथ ही आपको बता दें कि काशी में कल मंगलवार को सुबह 10 किलोमीटर बारिश हुई। सूर्योदय के बाद तीखी धूप निकली तो गर्मी और उमस ने लोगों को बेबस कर दिया। अधिकतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री ऊपर 35.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा यानी कि 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कल बृहस्पतिवार और शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी हो गई है। हवा में नमी 90% पर आ गई है। और आपको बता दें कि सावन में रथयात्रा से गिरजाघर के बीच कल मंगलवार से टेस्टिंग ट्रायल शुरू हो गया है। जी हां, इस पर रोप डालने के बाद गंडोला चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि लोड टेस्टिंग के जरिए सुरक्षा की गहन जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया में निर्माण कार्य में कमी पाई जाती है तो उसे तत्काल ठीक किया जाता है। ये टेस्टिंग एक बार नहीं बल्कि कम से कम 4 बार दोहराई जाती है ताकि परियोजना को जनता के लिए पूरी तरह सुरक्षित रूप में शुरू किया जा सके। इससे भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कतें नहीं आती हैं। ये एशिया का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट है जिसे काशी में शुरू किया गया है। कुल 3.8 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर कैंट स्टेशन से कोदौलिया तक यात्रा होगी। बीच में काशी विद्यापीठ और रथयात्रा इंटरमीडिएट स्टेशन हैं, जबकि गिरजाघर एक तकनीकी स्टेशन है। इस प्रकार कुल 5 स्टेशन और 29 टावर के सहारे रोपवे चलेगा। रोपवे प्रोजेक्ट की सुरक्षा को विश्व स्तरीय बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। टेस्टिंग के दौरान हर गंडोले में 10 यात्रियों का वजन 800 किलो और 10% अतिरिक्त वजन कुल मिलाकर 880 किलो को ध्यान में रखकर परीक्षण किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि काशी से बीते 40 साल में निकली 200 से ज्यादा तकनीकी प्रतिभाएं अब करोड़पति यानी कि मिलेनियर और अरबपति हैं। जी हाँ, ये सभी अगले महीने अमेरिका की विंड सिटी शिकागो में एक साथ होंगी। वहां भारत को एआई लीडर बनाने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। शिकागो सम्मेलन में एआई, रक्षा, तकनीक, कारोबार और उद्योगों का भी संगम होगा। शिकागो के द वेस्टेन शिकागो लॉम्बार्ड में 5 और 6 सितंबर को ग्लोबल एल्यूमिनी मीट 2026 होना है। करीब 900 अरब डॉलर के मालिक जी स्केलर के संस्थापक जय चौधरी के साथ 40 पुराने बैच के 200 से ज्यादा पूर्व छात्र एक मंच पर होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे। वो पहले दिन 5 सितंबर को चाय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने आईआईटी बीएचयू से 1979 बैच में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया था। 12,500 करोड़ संपत्ति वाले पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के सीईओ निकेश अरोड़ा और टेस्ला के सीएफओ दीपक आहूजा भी इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। आईआईटी से निकलकर दुनिया भर में अपने कारोबार और तकनीक जगत में कुछ नया मुकाम पाने वाले दिग्गजों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी के बरेका और आसपास के इलाकों को जल्द ही जलभराव की समस्या से स्थायी मुक्ति मिलने जा रही है। जी हां, बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका और वाराणसी नगर निगम के बीच 45.30 करोड़ रुपए की वर्षा जल निकासी परियोजना के लिए एक एएमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस योजना के तहत पहाड़ी गेट से चितईपुर रोड तक लगभग 14.20 किलोमीटर लंबा ड्रेनेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसमें बरेका 24 करोड़ और नगर निगम 21.30 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। एएमयू के दौरान यूपी के एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, महापौर अशोक कुमार तिवारी और बरेका के महाप्रबंधक आशुतोष पंत मौजूद रहे। इस परियोजना से मानसून के दौरान हजारों स्थानीय नागरिकों और रेलवे कॉलोनियों को जल जमाव से राहत मिलेगी। तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 12th of August। आज के दिन ईयर 1948 में स्वतंत्र भारत की पुरुष हॉकी टीम ने लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को 4-0 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता था। 1960 में आज के दिन नासा ने अपना पहला सफल संचार उपग्रह इको ए अंतरिक्ष में भेजा था। ईयर 1981 में आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर बाजार में उतारा था। और अब बर्थडेज की बात की जाए तो आज के दिन साल 1919 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ। इसी के साथ ही साल 1914 में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का जन्म हुआ। और आज के दिन बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान का भी जन्म आज के दिन

साल 1995 में हुआ था। और स्पेशल इवेंट्स की अगर बात की जाए तो आज है इंटरनेशनल यूथ डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। आज का दिन दुनिया के नाम है, यानी हमारे कल, हमारे भविष्य, यानी कि हमारे युवाओं के नाम। और इंटरनेशनल यूथ डे 2026 में इस साल संयुक्त राष्ट्र ने युवाओं के लिए एक बहुत ही प्यारी और गहरी बात कही है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, यानी रास्ते भले ही अलग हों, हालात भले ही जुदा हों, पर दिल की धड़कन और सपने सबके एक जैसे हैं। और देखिए, बात चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे युवा की हो, चाहे वो बड़े महानगरों की चकाचौंध में हो या छोटे से गांव की मिट्टी से जुड़ा हो, हर नौजवान की आंखों में एक ही चमक है, कुछ कर दिखाने की जिद, अपनों को और खुद को एक बेहतर पहचान देने की उम्मीद। हालात सबके अलग हो सकते हैं, मुश्किलें जुदा हो सकती हैं, पर आसमान छूने की चाहत सबकी एक सी है। यही तो खूबसूरती है इस उम्र की। थकना मना है, रुकना मना है, क्योंकि उड़ान अभी बाकी है। तो सभी युवाओं को आज इंटरनेशनल यूथ डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। एंड नाउ बनारस, लेट्स मूव ऑन टू योर फेवरेट सेगमेंट, बात जरूरत की। देखिए, बारिश हो रही हो, ऑफिस पहुंचने की जल्दी हो और सड़क पर कोई ऑटो रिक्शा ना दिखे, तो ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे समझे मोबाइल निकालकर कैब बुक कर लेते हैं। उस समय बस यही चिंता होती है कि किसी तरह बस जल्दी से गाड़ी मिल जाए और ऑफिस पहुंच जाए। लेकिन साइबर फ्रॉड्स भी इसी जल्दबाजी का इंतजार कर रहे होते हैं। जी हाँ, कभी ड्राइवर ऐप से बुकिंग कैंसिल कराकर ऑफलाइन चलने को कहता है, कभी अतिरिक्त पैसे मांगता है, तो कभी पेमेंट या ओटीपी के नाम पर ठगी की कोशिश होती है। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही आपका पैसा भी डुबो सकती है और सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कैब और ऑटो बुक करते समय बरती जाने वाली जरूरी सावधानियों के बारे में। साथ ही जानेंगे बारिश में कैब ऑटो बुकिंग से जुड़े स्कैम क्यों बढ़ जाते हैं और कैब में बैठने से पहले किन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। देखिए, बारिश के मौसम में कैब और ऑटो की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ ड्राइवर और साइबर ठग एडवांस पेमेंट और ओटीपी लेकर ठगी को अंजाम देते हैं। इसे कैब ऑटो बुकिंग स्कैम कहते हैं। बारिश में इस तरह के स्कैम बढ़ने के कई कारण हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम मिलने पर लोग जल्दबाजी में वाहन बुक करते हैं। लंबे इंतजार से बचने और समय पर पहुंचने की मजबूरी में यात्री ड्राइवर की बात मान लेते हैं और ऐप की डिटेल ठीक से चेक नहीं करते। कई बार ड्राइवर सर्च प्राइस और कम उपलब्धता का फायदा उठाकर ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। अब चलिए जानते हैं कि किन किन तरीकों से ये स्कैम हो सकता है। देखिए, ठग इसके लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जैसे ऑफलाइन राइड बुक करना। ड्राइवर आपको कॉल करता है, कहता है कि ऐप से बुकिंग कैंसिल कर दीजिए, मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। बाद में वो मनमाना किराया मांगता है, ऐप रिकॉर्ड खत्म हो गया है और अब शिकायत करना मुश्किल है। नकली सर्च प्राइस का बहाना, ड्राइवर बारिश का बहाना बनाकर ऐप में दिख रहे किराए से ज्यादा पैसे मांगता है। गलत गाड़ी आना, ऐप पर दिख रही गाड़ी और मौके पर आई गाड़ी अलग हो सकती है, नंबर प्लेट अलग हो सकते हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा है। ड्राइवर दूर से ही ट्रिप शुरू कर देता है, इससे वेटिंग चार्ज या एक्स्ट्रा फेयर जुड़ सकता है। ड्राइवर पानी भराव या ट्रैफिक का बहाना लेकर लंबा रूट चुनता है, ग्राहक जल्दी में होता है इसलिए विरोध नहीं करता। कुछ ड्राइवर पेमेंट मिलने के बावजूद कहते हैं कि पेमेंट नहीं आया, जल्दबाजी में होने और बहस से बचने के लिए ग्राहक डबल पेमेंट कर देते हैं। कैब में बैठने से पहले कुछ बातों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, जैसे ऑफिशियल ऐप से आप बुकिंग करिए, गाड़ी नंबर मॉडल नंबर मैच करिए, ड्राइवर का नाम और फोटो देखिए, ट्रिप शुरू होने के बाद ही गाड़ी में बैठिए। ट्रिप की जो डिटेल्स है वो आप अपने पार्टनर को या अपने घर में किसी को भी, किसी फैमिली मेंबर को जिसपे आप भरोसा करते हैं, उन्हें आप जरूर से शेयर कीजिए। ऐप जो है आपका वो पूरे टाइम चालू रखिए, रूट पर नजर बनाए रखिए, ऐप के बाहर पेमेंट मत करिए और पर्सनल डिटेल्स तो बिल्कुल शेयर मत करिए। पेमेंट कंफर्मेशन खुद देखिए और शक हो तो पुलिस की भी आप मदद ले सकते हैं। अगर ड्राइवर फोन करके बुकिंग कैंसिल करने को कहे तो ऐसी स्थिति में आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है और कुछ कदम उठाने की जरूरत है। कैसे? साफ मना कर दीजिए और कहिए कि राइड ऐप पर ही बुक होगी, किसी भी स्थिति में ऐप कैंसिल करके ऑफलाइन राइड न ले। अगर ड्राइवर बार बार दबाव बनाए तो खुद राइड कैंसिल कर दूसरी कैब बुक करिए। ऐप में ड्राइवर के व्यवहार की तुरंत शिकायत करिए और कॉल पर किराया तय करने या अतिरिक्त पैसे देने से बचिए। ऐप कैंसिल कराकर ऑफलाइन राइड लेना रिस्की इसलिए होता है

है क्योंकि इसमें ग्राहक की सुरक्षा और अधिकार दोनों खतरे में होते हैं, क्योंकि ऐप की लाइव ट्रैकिंग बंद हो जाती है जिससे लोकेशन मॉनिटर नहीं हो पाती, राइट की हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए बाद में शिकायत करना मुश्किल होता है। किसी विवाद या ठगी की स्थिति में सबूत नहीं मिलते हैं। ऐप से मिलने वाली बीमा और कस्टमर सपोर्ट सुविधाएं प्रभावित होती हैं। सर्च प्राइसिंग में किराया ऐप पर पहले से ही दिखता है, जबकि स्कैम के बाद में रकम बढ़ाई जाती है। इनके बीच का फर्क समझने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐप में दिख रहा किराया ही सही है, उसी को मानिए। अगर ड्राइवर ऐप के बाहर अतिरिक्त पैसे मांगता है तो ये स्कैम है। भारी बारिश या पीक टाइम में सर्च प्राइस सामान्य है, लेकिन ड्राइवर अब मनमाना किराया नहीं ले सकते। किसी भी अतिरिक्त चार्ज के लिए ऐप में अपडेट दिखना चाहिए। कैब राइड के दौरान कुछ चीजें नजरअंदाज करना रिस्की हो सकता है, जैसे गाड़ी नंबर, मॉडल।

कुछ चीजें नजरअंदाज करना रिस्की हो सकता है, जैसे गाड़ी नंबर मॉडल मैच ना करना, ड्राइवर ऐप बंद करने को कहे तो मान लेना, तय रूट से अलग रास्ते पर अगर ड्राइवर जाए, ट्रिप खत्म किए बिना पैसे मांगे, बहाने बनाकर पैसे मांगे, ऐप में लोकेशन अलग दिखे, ड्राइवर पर्सनल डिटेल पूछे और कोई दूसरा व्यक्ति गाड़ी में हो, ऐप में इसकी जानकारी ना हो। जल्दबाजी में फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए भुगतान करते समय ये जरूरी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। जैसे हमेशा राइड बुकिंग ऐप पर ही पेमेंट करें, QR कोड स्कैन करते समय नाम और अमाउंट जरूर चेक करें, पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन देखें, बैंक SMS UPI ऐप या स्टेटमेंट में एंट्री जरूर चेक करें, ड्राइवर के पेमेंट नहीं मिला कहने पर क्रॉस चेक करने के बाद ही दोबारा पेमेंट करें। अगर देर रात कैब से यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे डिटेल परिवार या दोस्त से शेयर करें, लाइव लोकेशन ऑन रखें, हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठें, ड्राइवर के ठीक पीछे ना बैठें, हमेशा बाईं तरफ बैठें, फोन पूरी तरह चार्ज रखें, सुनसान जगह से कैब ना लें, रूट को लगातार ट्रैक करते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ही उतरें और शक हो तो पुलिस को सूचना तुरंत दें। अगर स्कैम हो जाए तो आप बिल्कुल मत घबराइए, ऐसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना जरूरी होता है। सबसे पहले ऐप में जाकर तुरंत शिकायत करिए, राइड का स्क्रीनशॉट और ट्रिप डिटेल सुरक्षित रखिए, ड्राइवर का नाम, गाड़ी नंबर और समय नोट करिए, अगर पेमेंट फ्रॉड हुआ है तो तुरंत बैंक या UPI ऐप में रिपोर्ट करिए, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करिए, नेशनल साइबर हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जल्दी की गई कार्रवाई से पैसे वापस मिलने और आरोपी के खिलाफ एक्शन की संभावना बढ़ जाती है। बात जरूरत की। सो आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यस देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन PKLGAIR Varanasi@gmail.com। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से, एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स, खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कभी किसी का दिल न दुखे। आने वाले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इजाजत दीजिए, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी डे। बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने पारित किया अधिकरण सुधार विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा। विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। और ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। इससे पहले विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बीच प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के सभी मदरसे भी भाग लेंगे।
3: इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया है, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है, उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हो। इस अभियान का जो मकसद है उसको हम धरातल को ले जाएंगे।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया।
4: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति के लिए कल से साक्षात्कार शुरू हो गया। इस पद के लिए करीब 5,200 आवेदन आए थे,

0: जिनकी स्क्रीनिंग के बाद 18 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया है।
1: राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर में 9 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। बाकी बचे 9 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 सदस्यीय चयन समिति इंटरव्यू के बाद चयनित व्यक्ति की जानकारी ट्रस्ट को सौंपेगी। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल इस एक्सपो का अनौपचारिक शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 684 करोड़ रुपए की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक बन रही रेलवे लाइन संत कबीर नगर के विकास का आधार बनेगी।
2: जो सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खलीलाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है लैंड बैंक जैसे ही यहाँ का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सोनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से माधोपुर बंधे तक 2-लेन मार्ग का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मार्ग की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर आदि स्थानों पर जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी।
3: अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4-लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं।
0: सावन माह की शिवरात्रि के पावन अवसर पर कल प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। बागपत के ऐतिहासिक श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम और हापुड़ के श्री गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर सहित प्रदेश के कई प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया।
4: जनपद हापुड़ में सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे वातावरण शिवमय बना रहा। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर सबली, सरावा के झारखंडी महादेव के अलावा जनपद के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, आग, धतूरा, चंदन आदि से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल से जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने पारित किया अधिकरण सुधार विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा। विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। और ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: तब तक लड़ना मत छोड़ो।

0: की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7:31 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत शहनाई वादन। आज के कलाकार हैं चंद्रकांत प्रसाद, राग है ललित।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत शहनाई वादन। आज के कलाकार थे चंद्रकांत प्रसाद, राग था ललित। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जो रिले होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर

0: में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शिवजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा

0: स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
1: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सोल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेनजी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 से 5 के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:00

0: 10 मिनट से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं, झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोक सत्य की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें
9: 0542227658,
10: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
11: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 16 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, कारण, लक्षण और बचाव। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर होंगे डॉक्टर विकास जायसवाल। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 13 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। हमारा फोन नंबर है 2221052, वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम, आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
12: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8:45 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा
1: सदाबहार फिल्मी गानों के कार्यक्रम मधुरिमा में आप सबका स्वागत है। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में आज का पहला गाना फिल्म यस बॉस से। गाने के बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत दिया है जतिन ललित ने और आवाज़ है अभिजीत भट्टाचार्य की।

फिल्म यस बॉस से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैं हूं ना से। गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत है अनु मलिक का और आवाज़ें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

फिल्म मैं हूं ना से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परदेश से, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है नदीम श्रवण का और आवाज़ है कुमार शानू की।

फिल्म परदेस से अभी आपने ये गीत सुना। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लावारिस से, जिसके बोल हैं प्रकाश मेहरा के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और आवाज़ है किशोर कुमार की।

फिल्म लावारिस से अभी आपने ये गीत सुना। अगला गीत सुनिए फिल्म डॉन से। इसके बोल हैं अनजान के, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और आवाज़ है किशोर कुमार की।

0: का वो यार हूँ, यारी में ये जान लुटा दे जो।
1: फिल्म डॉन से अभी आपने सुना ये गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कश्मीर की कली से। गीत के बोल लिखे हैं SH बिहारी ने, संगीत है OP नैयर का और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

अभी आपने सुना फिल्म कश्मीर की कली से ये गीत, और इस गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरमा यहीं संपन्न होता है।

0: Madhurima, the sound of melody.
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है. अब आप सुनेंगे जिले की हलचल जो रिले होगा हमारे लखनऊ केंद्र से.
2: चल आज सुनिए रायबरेली और शाहजहांपुर जिले की हलचल.
3: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है. जिले की हलचल आज सुनिए रायबरेली और सहारनपुर जिलों की हलचल. पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल. आलेख और स्वर है पंकज सिंह का.

रक्षाबंधन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद्र सिंह ने सभी होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों के संचालकों को सख्त निर्देश जारी करते हुए गुणवत्ता और साफ सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। सहायक आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मिठाइयों से भरी ट्रे पर बेस्ट बिफोर और यूज्ड बाय की जानकारी वाले स्टिकर अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। बिना लेबल के मिठाइयों की बिक्री पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली खाद्य दुकानों पर उपभोक्ताओं की शिकायत और फीडबैक के लिए QR बार कोड प्रणाली लागू की गई है, ताकि श्रद्धालु सीधे विभाग तक शिकायत दर्ज करा सकें। होटल और रेस्टोरेंट से निकलने वाले इस्तेमाल किए गए तेल के सुरक्षित निस्तारण और प्रबंधन के संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विभाग

0: दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विभाग ने विशेष सचल दल तैनात किया है, जो लगातार बाजारों, मिठाई दुकानों और भोजनालयों की जांच कर रहा है। रक्षाबंधन को देखते हुए मिठाइयों के लगातार नमूने लेकर प्रयोगशाला जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं। सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद सिंह ने बताया,
1: कोई भी पेरिसेबल आइटम हो या नॉन पेरिसेबल आइटम, उनका बेस्ट बिफोर और यह यूज बाई जरूर मेंशन करें। सभी आपके फूड हैंडलर मेडिकल टेस्ट अपना करा लें, क्योंकि जो भी कंज्यूमर आए उनके लिए एक रिडक्शन सिस्टम रखें, जिसपे उनसे फीडबैक लें कि क्या सही है क्या गलत है, कि जो भी डिब्बे की क्वालिटी हो उसको इंश्योर करें। इस हिसाब से डिब्बों का भी संचालन रखें, जिससे कि किसी प्रकार की शिकायत न हो। अगर किसी प्रकार की शिकायत या प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ फिर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
0: श्रावण मास में आबकारी विभाग ने कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को कपड़े से ढकवा दिया है। जनपद में लालगंज, डलमऊ, सलोन व ऊंचाहार के मार्ग ऐसे हैं जहां से श्रद्धालु पैदल चलकर गंगा घाट पहुंचते हैं। इन सभी मार्गों में पड़ने वाली शराब की दुकानों को ढकवाने का निर्देश दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया,
2: जिले में कुल 58 दुकानें चिन्हित की गई हैं, जिन्हें कपड़े से ढका गया है। और कपड़े से ढकने का मुख्य कारण यही है कि जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानें लोगों को दिखाई ना पड़े, उनका ध्यान रखना है, कोई किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना। परिक्षेत्र में पड़ने वाले सभी संदिग्ध ग्रामों पर भी हम सतत निगरानी रख रहे हैं और लगातार हमारी प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है।
0: श्रावण मास के पहले सोमवार को जनपद रायबरेली पूरी तरह शिवमय हो उठा। भोर की पहली किरण के साथ ही मंदिरों की घंटियां गूंज उठी और भगवान भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री लेकर मंदिरों की ओर रवाना होने लगे। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए मंदिर पहुंची, युवाओं ने कांवर लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने शांत भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शहर के प्रसिद्ध जगमोहनेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। मंदिर परिसर के बाहर सैकड़ों श्रद्धालु हाथों में जल कलश और पूजा सामग्री लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। मंदिर में प्रवेश के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई थीं, ताकि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को असुविधा न हो। रायबरेली के ओई गांव में बारिश के जमीन धंसने से एक सुरंग और पक्की दीवार जैसी संरचना दिखाई दी। इस अनोखी संरचना को देखने के लिए देखते ही देखते पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम महाराजगंज और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई लखनऊ मंडल की टीम मौके पर पहुंची। सहायक पुरातत्वविद डॉक्टर मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में टीम सीढ़ी के सहारे इस रहस्यमय सुरंग के अंदर उतरी। सुरंग के अंदर जांच के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम को कई ऐतिहासिक चीजें मिली हैं। यहां से प्राचीन काल की पुरानी ईंटें, मिट्टी के सुराही और एक हैंडल वाली धूपदानी बरामद की गई है। एक्सपर्ट के शुरुआती आकलन के मुताबिक ये सभी अवशेष कुषाण कालीन बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान गांव के ही रहने वाले अशोक प्रताप मौर्य के पास से भी कई प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिन्हें वो 1985 से सहेज कर रखे हैं। बताया जा रहा है यह ओई भीट पुरातत्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज एक ऐतिहासिक स्थल है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और ग्रामीणों को गड्ढे के पास जाने से मना किया गया है। एएसआई की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही इस प्राचीन और ऐतिहासिक सुरंग के बारे में और जानकारी मिल सकेगी। हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने और इसमें अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी सरनीत कौर प्रोगा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापारिक संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, निजी संस्थानों तथा अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग व जन भागीदारी से हर घर तिरंगा अभियान सफल बनाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। अभियान के दौरान जनपद के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, राष्ट्रनायकों की प्रतिमाओं का अलंकरण कराया जाए तथा प्रमुख बाजारों, चौराहों और पार्कों को तिरंगा थीम पर सजाया जाए। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों आदि पर ध्वजारोहण, सम्मान और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा नागरिक गण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए।
3: रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत कुमार सैनी का।
4: सहारनपुर में श्रावण कांवड़ यात्रा सकुशल ढंग से संपन्न हुई। हरिद्वार से गंगा जल लेकर यहां से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए लाखों शिव भक्तों के जयघोष से जिला शिवमय बना रहा। कांवड़ मार्ग पर जगह जगह सेवा शिविर, भंडारे और स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशासन और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हर हर महादेव और बोल बोल।

0: के जयघोष से वातावरण भक्ति में रहा। मंडलायुक्त डॉक्टर उपेश कुमार एवं डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान, एसएसपी अभिनंदन, नगर आयुक्त शिपुगिरी, सीडीओ सुमित राजेश महाजन के नेतृत्व में यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन ने पूरे कावड़ मार्ग को 3 सुपर जोन, 11 जोन और 23 सेक्टरों में बांटकर 69 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए। 4 नियंत्रण कक्षों में 54 अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहे। 12 प्रमुख मंदिरों पर जलाभिषेक के लिए 14 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। 40 अस्थायी चौकियां, 27 बैरियर, 32 पिकेट, 15 वॉच टावर स्थापित किए गए। कावड़ मार्ग पर स्ट्रीट लाइट, जनरेटर, शौचालय और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई। करीब 148 ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों की नियमित जांच भी की गई। कावड़ियों के स्वागत में मंडलायुक्त डॉक्टर उपेश कुमार और डीआईजी अभिषेक सिंह ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इससे एक दिन पूर्व नगर निगम की ओर से महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने भी नगर आयुक्त शिपुगिरी और योग गुरु भारत भूषण के साथ हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर फूल बरसाए। वहीं गागलहेड़ी में करीब 2,70,000 रुपए के नोटों से सजी कावड़ भी आकर्षण बनी। जिले में युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला सलाहकार समिति की बैठक में युवाओं को स्वयं सेवा, कौशल विकास, इंटर्नशिप और नेतृत्व विकास के अवसरों की जानकारी दी गई। ब्लॉक, ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर अधिक से अधिक युवाओं को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की वार्षिक पत्रिका नवोदय प्रभात का डीएम अरविंद कुमार चौहान ने विमोचन किया। पत्रिका में विद्यार्थियों की मूल रचनाओं और विद्यालय की गतिविधियों को शामिल किया गया है। जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत चयनित 14 महिलाओं और 14 पुरुषों समेत 28 लाभार्थियों को चयन एवं अनुमति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में स्वदेशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी संख्या में तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों के साथ आम लोगों को भी अभियान में शामिल किया जा रहा है। वहीं आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 23 सितंबर तक लागू की गई है। बिना अनुमति जुलूस, सभा और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ और निर्धारित क्षेत्र में फोटो कॉपी स्कैनर संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। चाइनीज और सिंथेटिक मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस सीओ के गनर राहुल ढाका हत्याकांड में अदालत ने मेहताब उर्फ काना उर्फ जीवा और सादर खां को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अभियोजन की ओर से 17 गवाह पेश किए गए। 5 मई 2013 को चिलकाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप लूट के बाद बदमाशों का पीछा करते हुए गनर राहुल ढाका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नानोता स्थित किसान सहकारी चीनी मिल में करीब 68 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। आरोप है कि ठेकेदारों से मिली भगत कर एक ही काम को दो बार भुगतान कराया गया। इस मामले में पुलिस ने अकाउंटेंट चैतन्य राम ठाकुर को गिरफ्तार किया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आप सुन रही थी जिले की हलचल।
3: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र से प्राप्त एक सूचना के अनुसार अंकिता पटेल, पुत्री स्वर्गीय पंकज, अपने पते विरगी थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र से दिनांक 17 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। इनके संबंध में कोई भी जानकारी यदि आपको प्राप्त हो तो अपने नज़दीकी थाना या थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र से संपर्क कर सकते हैं। इनके संबंध में जानकारी कुछ इस प्रकार है। इनकी उम्र 19 वर्ष, रंग सांवला, चेहरा लंबा और कद 5 फीट है। इन्होंने लापता होने के समय नारंगी रंग की टी शर्ट, नीले रंग की पैंट और सैंडल पहनी थी। अगली सूचना थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र से प्राप्त है।

0: कमला कुमारी पुत्री बंगाली कुमार अपने पते नेमना थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र से दिनांक 4 जून 2026 से कहीं लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी कुछ इस प्रकार है। इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष, कद करीब 5 फीट, रंग गोरा और चेहरा गोल है। लापता होने के समय इन्होंने पिंक सूट पहना था। इनके संबंध में कोई भी जानकारी यदि आपको प्राप्त हो तो अपने करीबी थाना या थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र को सूचित कर सकते हैं। अगली सूचना थाना बभनी जनपद सोनभद्र से ही प्राप्त है। सविता देवी पत्नी सुरेंद्र कुमार अपने पते से दिनांक 18 जून 2026 से कहीं लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी कुछ इस प्रकार है। इनकी उम्र 19 वर्ष, कद करीब 5 फीट, रंग सांवला और चेहरा गोल है। लापता होने के समय इन्होंने लाल रंग की साड़ी तथा हल्के रंग का हवाई चप्पल पहन रखा था। इनके संबंध में कोई भी जानकारी यदि आपको प्राप्त हो तो अपने नज़दीकी थाना या थाना बभनी जनपद सोनभद्र को सूचित करें। थाना बभनी जनपद सोनभद्र से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार शांति देवी पत्नी संतोष कुमार अपने पते ग्राम चौना पोस्ट घघरा थाना बभनी जनपद सोनभद्र से दिनांक 18 जून 2026 से कहीं लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी कुछ इस प्रकार है। इनकी उम्र 22 वर्ष, कद करीब 5 फीट, रंग गोरा और चेहरा गोल है। लापता होने के समय इन्होंने मैरून रंग की साड़ी और हल्के गुलाबी रंग का चप्पल पहन रखा था। इनके संबंध में यदि कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो तो अपने नज़दीकी थाना या थाना बभनी जनपद सोनभद्र को सूचित करें। थाना ओबरा जनपद से प्राप्त एक सूचना के अनुसार अरविंद शर्मा पिता रमेश शर्मा अपने पते बजरंग नगर सुभाष पेट्रोल टंकी के पीछे थाना ओबरा जनपद सोनभद्र से कहीं लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी कुछ इस प्रकार है। इनकी उम्र 34 वर्ष, कद 5 फीट। लापता होने के समय इन्होंने काले रंग की टी शर्ट और सफ़ेद जीन्स की पैंट पहनी थी। इनके संबंध में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो अपने नज़दीकी थाना या थाना ओबरा जनपद सोनभद्र को सूचित कर सकते हैं। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना यहीं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम जो रिले होंगे
1: आज की पेशकश गोरखपुर के मरकज से।
2: उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के उर्दू प्रोग्राम का आगाज करेंगे डॉक्टर दरख्शां ताजवर के एक मकाले से जिसका उन्वान है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का बेखौफ अखबार पयाम आज़ादी। और कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं जनाब शब्बीर अजीज़ी। लेकिन पहले समाअत फरमाइए एक मुख्तसर तकरीर तहरीक आज़ादी और उर्दू अखबार। ख्वातीनो हज़रात, पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने शबाब पर हैं और क्यों ना मनाएं हम ये जश्न आज़ादी, क्योंकि एक तवील सियाहरात के बाद हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज़ादी के हुसूल में इस आज़ादी को पाने के लिए न जाने कितनी माओं ने अपने बेटों को, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को और कितनी सुहागिनों ने अपने शौहरों की कुर्बानियां पेश की, तब कहीं जाकर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख में शहीदाने वतन की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज़ादी वतन के खातिर जानिसार करने वालों के साथ साथ मुल्क के अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों ने भी अपने कलम से

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:50 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं डॉक्टर माधवी सिंह। आइए इनके स्वर में सुनते हैं सबसे पहले ये लचारी।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर माधवी सिंह के स्वर में लाचारी। आइए अब सुनते हैं इनके ही स्वर में ये कजरी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कजरी। आज की कलाकार थीं डॉक्टर माधवी सिंह। लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला गीत सुनिए फिल्म अजनबी से। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है आरडी बर्मन का और आवाज़ है किशोर कुमार की।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

फिल्म अजनबी से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रिंस से। इस गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के, संगीत है शंकर जयकिशन का और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

फिल्म प्रिंसेस से सुन रहे थे अभी आप ये गीत। अगला गीत सुनिए फिल्म कटी पतंग से। बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत आर डी बर्मन का है और आवाज़ है मुकेश की।

फिल्म कटी पतंग से सुन रहे थे अभी आप ये गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम फिल्म चाइना टाउन से। बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत है रवि का और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

यहाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ।

दिल मिला एक जन महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला ये न पूछो के कहा। दिल मिला एक जन महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला ये न पूछो के कहा। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा चार।

बल्ले उठ के मिट्टी पर क्यों चले, जाते मेरे कहो क्यों जले, बैठ जाओ मेहरबान बल्ले बल्ले उठ के मिट्टी पर क्यों चले, जाते मेरे कहो क्यों चले, बैठ जाओ मेहरबान, दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म चाइना टाउन से ये गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तेरे घर के सामने से ये गीत। इस गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के, संगीत है आरडी बर्मन का और आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरे घर के सामने से ये गीत। अगला गीत सुनिए फिल्म फर्ज से। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ है लता मंगेशकर और मुकेश की।